सुनियो गुर संगत तिहें मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास

अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई वाहिगुरु जी नीचे लोयन कर रहूं ले साजन घट माहे सब

जुगो जुग अटल, चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर, शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच

ऐसो को मांगे मोकू कर संतन की। एक बेनती है कि कलोना वाले पासे पटिंगटर पासे बीसिस बहुत सारिया अगर लगियां हुई तो बहुत सारे लोग बेकार हो गया और उन्होंने वास्ते जो है कुछ वरस्ता वस्ता जो अपने दरियावी परिवार के काम आदि बच्चों लिए और टूथपेस्ट वगैरह ब्रश वगैरह होर चीज़ा जड़िया ने वह तुम लिया के गुरद्वारा साहब पहुँचा सकते जे अगर नहीं तो माया भी दे सकते वो रसीद तुम्हें मिलेगी। तो यह सारा जिन्ना भी समान है उन्होंने वास्ते असी जी कर रहे हैं इसलिए इस इंसानियत की सेवा में आप सारे ने हिस्सा पाना और जो जो माई भाई गुरमुख प्यारे जो भी सुन रहे हैं कोशिश करो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ये रसदा वसदा पहुँचाने की कृपालता करो ता कि इन्हों का इंतजाम करके उतों तक पहुँचाया जा सके। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

करता करे सो होई, सतगुर एक विखाड़िया मन तन सुख होई। गुरमुख सदा सलाहिए करता करे सो होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला दूजा। जिने चलन जानिया से क्यों करें विथार, चलन सार ना जानने काज सवारण हार। धन वाहिगुरु साहब जी, धन वाहिगुरु साहब जी। मलार महला तीजा। मेरा प्रभ साचा दुख निवारण, शब्दे पाया जाई भगती राते सद बैरागी। दर साचे पत पाई मन रे मन स्यों रहो समाई। गुरमुख राम नाम मन पीछे हर से तिल विलाई रहा।

देही काची पौण बजाए, गुरमुखी अमृत पाए। आपे साजे सब कार लाए, सो सच रहे समाई। नानक नाम बिना कोई किश नाही, नामे दे वडाई। मलार महला तीजा। हौ मैं बिख मन मोहया, लद्या अजगर भारी। गरुड़ शब्द मुख पाया, हौ मैं बिख हर मारी। मन रे हौ मैं मोह दुख पारी, ए पवजल जगत न जाई तरना। गुरमुख तर हर तारी रहाउ, त्रै गुण माया मोह पसारा। सब वरत आकारी, तुरिया गुण सत संगत पाईए। नदरी पारी उतारी, चंदन गंध सुगंध है। बहु बासना बहकार, हरजन करनी उत्तम है। हर कीर्त जग विस्तार, कृपा कृपा कर ठाकुर मेरे। हर हर हर उरतार, नानक सतगुर पूरा पाया। मन जपया नाम मुरार,

सतगुर सेवा जम की कान चुकाई, हर प्रभ मिले अमैल कर पाई। प्राणी गुरमुख नाम ते आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोया, खोटी बदले जाए रहाओ। कर कृपा गुरमुख लगे प्यार, अंतर भगत हर हर उर तार, पवजल शब्द लंगावन हार, तर साचे दिसै सच्चियार।

मन मुख दुख पाया। आपे करता अगम अथाह, गुर शब्दी जपिए सच लाहा, हाजर हजूर हर वे परवाहा, नानक गुर मुख नाम समाहा, मलार महला तीजा। जीवत मुक्त गुरमति लागे, हर की भगत वन दिन सद जागे। सतगुर सेवै आप गवाए, हौं तिन जन के सद लागो पाए। हौं जीवा सदा हर के गुण गाए, गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुकत गत पाई रहाओ।

मरमर जम मैं बड़े सजाए, गुरमुख राम नाम लिवलाए, कूड़े लालच ना लपटाए, जो कि शोवे सो सह सुभाए, हर रस पी वै रसन रसाए, कोट मधे किसे बुझाए, आपे बख्शे दे वडिआए, जो तन मिलिआ सो विछुड़ ना जाए, नानक हर हर नाम समाए, मलार महला तीजा।

रहे कुर शब्दी अस्थिर कर बह। रसना नाम सब कोई कहे, सतगुर से वेता नाम लहे। बंधन तोड़े मुक्त कर रहे, गुर शब्दी अस्थिर कर बह।

हमरी मैल साधु की तुर गवाई। तीर्थ आठ सठ मज्जन नाई, सत्संगत की तूर परी उड नेतरी, सब दरमत मैल गवाई रहा। जाहर नबी तपै भागीरथ, आन के दार था प्यो मै साई, काशी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई। जितने तीर्थ देवी थापे, सब तितने लोचे तूर साधु की ताई, हर का संत मिले गुर साधु, ले तिस की तूर मुख लाई। जितने श्रेष्ठ तुमरी मेरे स्वामी, सब तितनी लोचे तूर साधु की ताई, नानक ललाट होवे जिस लिखिया, ते साधु धूर दे हर पार लंघाई। मलार महला चौथा, तिस जन को हर मीठ लगाना, जिस हर हर कृपा करे, तिस की भूख दुख सब उतरे, जो हर गुण हर उचरे। जप मन हर हर हर निस्तर, गुर के बचन करण सुनते आवे, पव सागर पार पर रहाओ।

ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहिए हर हर कथा सुनावे तिस गुर को शादन भोजन पाठ पटंबर बहु बिद सत कर मुख संचो तिस पुन की फिर तोट न आवे। सतगुर देव प्रतख हर मूरत जो अमृत बचन सुनावे नानक भाग पले तिस जन के जो हर चरणी चित लावे मलार माला चौथा। जिन कहियरे बस्यो मेरा सतगुर ते संत पले पल पांत तिन देखे मेरा मन बिगसे हाँ तिन कह साध बल जांत। ज्ञानी हर

मलार महला चौथा पड़ताल करती जाय को ओंकार सत गुर प्रसाद हर जन बोलत श्री राम नामा मिल साध संगत हर तोर रहा हर तन बन जाओ हर तन संचो जिस लागत है नहीं चोर चात्रिक मोर बोलत दिन राती सुन कान हर की कोर जो बोलत है मृग मीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं होर नानक जन हर कीर्त गाई छूट गयो जम का सब सोर।

हार हमारो मीत सखाई, हम हर स्यो प्रीत लागी। हर हम गावे हर हम बोले, और द्वितीया प्रीत हम त्यागी। मान मोहन मोर प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागी। हर देखे जीवत है नानक, एक नमक पलो मुख लागी।

क्या तू सोचा है, क्या तू चितना है, क्या तू करें उपाय, ताको कहो प्रभा काहू की जे गोपाल सहाय।

अनेक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लावो भोग हर राए। दुष्ट बिदारे साजन रसे, ए मंदर कार्य अपनाए, ज्योगरे लाल रंगियो आया, तो मैं सब सुख पाए। संत सभाए उठ गुर पूरे, तोर मस्तक लेख लिखाए।

0: हम बारक पिता प्रभदाता भूले बारक अनक लख बरिया
1: अनठौर नाही देह जाता रहा चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मिले मात पिता कंठ रह राखे अनद सहज तब खिले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी नवनिद नाम करान नव नाम निदान ग्रह तेरे मन बांछ सोलैसी

मोहे हृदय बसे नित चरणा मलार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करिया तजो सगल अंदेसा कार्य सगल रंभ्यो कर का ठाकर का भरोसा सुनिए बाजे बा सुहावे भोर पिया मैं फिर मुख देख ग्रह मंगल सहलावे रहा मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संता जाए

सखी सहेली पे आनंदा, गुर कारज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ना चाही दूरे, मलाड महला पंजवा, राज ते कीट की ते सुरपत, कर दुख जठर को भरते, कृपा निध छोड़ अनको पूजै, आत्म काते हरते, हर बिसरते दुख दुख बरते, अनक बार भ्रमे बो जोनी, टेक न काहू तरते रहा, त्याग स्वामी आनको चितवत, मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाप लंगे कत सागर, बिरथा कथित हम तरते, शिव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक शरण चरण कमल के, तुम न डारो प्रभ करते, राग मलार महला पंजमा, दोपदे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रभ मेरे वे बैरागी त्यागी, हो एक खिन तिस बिन रह न सको, प्रीत हमारी लाख रहा, उनके संग मोहे प्रवचित आपै, संत प्रसाद मोह जागे, सुन उपदेश पय मन निर्मल, गुण गाए रंग रंगी, इहो मन दिए किए संत मीता, कृपाल पय बड भांगी, महा सुख पाया वर्ण साको, रीन नानक जन पागे, मलार महला पनमा, माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई, सगल सहेली सुख परसूती, जे कर लार बसाई रहा, मोहे अवगन प्राभ सदा दयाला, मोहे निर्गुण क्या चतराई, करो बराबर जे प्रै संगराती, ए हमे की टिठाई, पई न माणी सन एकता की, गुर सतगुर पुरख सुखदाई, एक निमख में मेरा सब दुख काटिया, नानक सुख रैन बिहाई, मलार महला पंजवा, बरस मेघ जे तिर बिरन लागो, बरस मेघ जे तिर बिरन लाओ, बरस प्यारे मने सदारे, हुए नंद सदा मन चाव रहा, हम तेरे तर स्वामी मेरे, तू क्यों मनो बसारे, ऐसे रूप चेरी की न्याय, सोब नहीं बिन परतारे, बिना सुनियो जब ठाकर मेरा, बेगायो कृपा तारे, कहो नानक मेरो बनो सुहागो, प्रीत सोभा प्रचारे, मलार महला पंजवा, प्रीतम साचा नाम ते आए, दुख दर्द बिरसै पव सागर, गुर के मूरत हृदय बसाए रहा, दुश्मन हते दोखी सब व्यापे, हर शरणाई आया, राखण हारे हाते राखियो, नाम पदार्थ पाया, कर कृपा किरवख सब काटे,
नाम निर्मल मन दिया, गुणदान नानक मन रपे, गुणदान नानक मन वसिया, बाहर दुख ना थिया, मलार महला पंजवा, प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रेम भगत अपनो नाम दीचै, दयाल अनुग्रह तारे रहा।

मन दर्शन की प्यासा बिशरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजे नानक नाम नानक दार जीवन धन नानक प्रभ मेरे कृपा की जय। मलार महला पंजवा अब अपने प्रीतम सो बनियाई राजा राम रमत सुख नी पायो राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुख दाई रहा एक पर बिसत नहीं सुख सागर नाम नवै निद पाई दोध प्यो पूर्ण पावी को भेटे संत सहाई।

नर पाव नर सागर पा उतरे पारे, जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे। काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भये निरारे, दीन दयाल जपे करुणा मैं नानक सद बलहारे। मलार महला पंजवां,

जय जयकार किन्नो सब जग में, दया जियन मह पायो, कंठ लाए अपने दास राखियो, ताती वन लायो, अंगीकार कियो मेरे स्वामी, भ्रम पौ मेट सुखायो, महानंद करो दास हर को, नानक विश्वास मन आयो, राख मलार महला पंजमा, चौप दे कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरमुख दिसे ब्रह्म प्रसार, गुरमुख त्रै गुनिया विस्तार, गुरमुख नाद बेबिचार, बिन गुर पूरे कोर अंदार, मेरे मन गुर कुर करत सदा सुख पाई है, गुर उपदेश हर हृदय बस्यो,

गुर की धूड़ करो इशनान, साची दर के पाइये मान। गुर बोहत भवजर तारण हार, गुर भेटे ऐ ना होए जोन उतार। गुर की सेवा सोजन पाए, ता को कर्म लिखिया तुरियाए। गुर मेरी जीपन गुर आधार, गुर मेरी बर्तन गुर परवार। गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पा ब्रह्म जाके कीम न पाई। मलार महला पंजवां, गुर के चरण हृदय वसाए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। अपने सेवक को लय प्रभ लाए, ताकि कीमत कही न जाए। कर कृपा पूर्ण सुखदाते, तुमरी कृपा ते तू चित आवे। आठ पहर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनना सब तेरा पाना। हुक्म बुझे सो सच समाना, जप जप जीवे तेरा नाम। तजबन दूजा नाही थाओ, दुख सुख करते हुक्म रजाई। भाणे बख्श पाणे दे सजाई,

0: नित नित होए खवार, सुचे नाखिय बैंज बिंडत हुए, सुचे से नानका जिन मन वस्या सोए पौड़ी।
1: पलाणे पौन वे गहर रंगी हरम सवारिया, पुठे मंडप माड़िया लह बैठे कर पसारिया, चीज कर मन भावन।

आपे श्रेष्ठ उपायन आपे फोन गोई जोग चारे साब भाव थकी केन कीमत होई।

जियो। डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जीओ चचा रचत चित्र है भारी, तज चित्रै चेतो चितकारी। चित्र बचित्र एह अवचेरा,

से प्रागुणतास हो तैस विटो चोखनी है मैं नाम करे प्रगास मेरे पीतमा हो जीवा नाम त्याय बिन बिन नाभे जीवन ना थी है मेरे सदगुण नाम दड़ाए रहा नाम।

मेरे सज्जन हगुण सार सज्जन सगुर पुरख है दुख में कड्डे मार रहा मन मुखिया सुहाकनी तन दया पे मन यार सतगुर वचन रतन है जुमने सो हरस खाए सेवड़ पाकी बढ़ जानी है जिन हरस खादा गुर पाए एहो वण एहो हरस वण तिन सब तै भागी नहीं खाए बिन साग फुल न पे मन मुख रहे प्रलाए वे सतगुरु अगे नर पे उन्ना अंतर क्रोध प्रलाए हर हर नाम रस है आपे हरस होए आप दया कर देव से गुरमुख अमृत सोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए सिराक मन दा चौथा दिन स चढ़े फिर हथ पे रण सपाई जाए आप कटे नर ना बचे नित मूसा लू लाइट काय गुड़ मिठा माया पसरिया मनुख लग माखी पचे बचाए

रतन पदार्थ मानका सुनरूपा काक मात पिता सत बंदपा कूड़े सभ्य साग जन की तात न जानी मनमुख पासन पाक अंतर बार डाप रहे आ तसन जाने दूर तसना लाकी जल रहे आ अंतर हमें कूर भक्ति ना पिहुणिया आवन वंदन पूर आवे बंजे पूर राख रे प्रभ रखनहार जी जंद कर दया बिन प्रभ कोई न रखनहार मां बिकट जम पिया नानक नाम न विसरो करे अपनी हर मया सिराख मला पनवान मेरा मन मेरा तन धन मेरा रूप चम देस सतारा बंता नेक बहुत रंग रफेस हर नाम रतन वसी कार्य कितन लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत निसाद के गुरचाणी चितराय रहा नाम जन त्याये मस्तक हुए पाक कर सस्वारिये गुर के चरणी लाग हमे रोग भम कटिय ना आवे न जाक कर संगत तू साध की अर्षा दीत नाम जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो स्वाव एथे मेरे वडेन दर के पाए थाओ करे कराया प्रभ सब कित तसे जाए

फल पहुंचे तू चुकै सब चुके सुस्ता प्रा जिस कारण तन धारिया सो प्रडिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रव्यापनी नद निहाल मन तन निर्मल होया लाखी सा प्रीत चरण भजे पा ब्रह्म के सब जप तप तिन कीत रतन ज्वेर मानका मत हर का नाम सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गा सिराख मन लपन मैं सोई सात सोन सोई जित जपी हर नाम चरण कमल गुर धन दिया मिलिया निथावेता साची पूंजी सा संजमो अठ पैर गुण गा कर कृपा पै भेटिया मरण आपन जाओ मेरे मन हर भज सतक रंग घट घट अंतर रफ रहे सदा साई संग रा सुखा कीमत क्या कनी जा सिमरी गोविंद जिन चाखिया से तरतासिया ओह रस जाने चंद संता संगत मम से प्रप्रीतम बख्शंद जिस जिन सेविया प्रभ आपना सोई राज निरिंद अवसर हर जस गुण रमन कूट जित कोट मजन

न विसरै सोए। मन बिर साचा सेस जिचर सास बिन साचे सब कूड़ै अंते उपनासरा। साहिब मेरा निफला तिस बिन रण चाहे मेरे मन तन भोखा तगली कोई आन मुनाफे माए। चारे कुंडा भालिया सहब नव न कोय सहब बिन अव न चाहे तिस आखे अरदास कर जो मेरे करतार। सतगुर चा सतगुर दाता नाम का पूरा जपंडार सदा सदा सलाही है अंत न पारा पार पर सलाही है।

गयात। साचो साहब सेविए गुरमुख कथो निकात, आवे जाए पुआई है पै करत कमाए। पूर्व लिखिया क्यों मेटिया लिखिया लेख रजाए। बिन हर नाम न छुटिया गुरमुख मिले मिलाए, तिसन मेरा कोने जिसका जियो प्राण। हमें ममता जल बलों लोभ जलों अपमान, नानक शब्द विचारिय पाइए गुणी निदान। श्री राग महला पहला। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़िए पी विकसे असने। जल में जियो पाए के बिन जल मरन तने, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहा बख्शे भगत भंडार राव। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी मछली नीर ज्यो दिक्यों अदको त्यो सुकनो, मन तन शांत शरीर व्यंजन कड़ी न जीवी प्रभ जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावले एक बूंद न पवी के, कर्म ले सो पाइय किरत प्या सिर दे। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी जल दुध होए आवटन आपे खवे दुध को खपन न दे। आपे मेल बछुनिया सच बड़े आई दे, रे मन ऐसी हर जो प्रीत का, जैसी चकमी सूर खेन पल नींद न सोवी जाने दूर। हजूर मनमुख सोजी न पवे गुरमुख सदा हजूर, मनमुख गणत गणावनी करता करे सोवे, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे सब कोई, गुरमुख होए तो पाइए सच मिले सुख होए। सच्चा ने न टुटी जे सतगुर पेटे सोए, ज्ञान पदार्थ पाइए त्रवण सोजी होए। निर्मल नाम न विसरे जे गुणा जे गुण का गायक होए, खेल कैसे पंखणु जो चुग दे सरताल। कड़ी के मोहित चलना खेलना आदि के काल, जिस तू मिले सो मिले जाए सच्चा पेड़ मल। बिन गुर प्रीत न उपजे हो मैं मैर न जाए, सोहिंगा आप पछाणिए शब्द भेद पति आए। गुरमुख आप पछाणिए अवरग करे कराए, मिलिया का क्या मिले शब्द मिले पति आए। मनमुख सोची ना पवे बिछड़ चोटा खाए, नानक दर करे कह अवर नद जी जाए। श्री राग महला पहला। मनमुख भूले भुलाइए भूली ठोर नकाए, गुरबिन को ना दिखावी अंधी आवे जाए। ज्ञान पदार्थ खोए अठ गया मुठा जाए, बाबा माया परम भुलाए। परम भुली डोहागण ना फिर अंक समाए, रहो भुली फिरे दसंतरी भुली ग्रह जाए। भुली डूंगर थल चढ़े पर मैं मन डुलाए, तुरों बछुनी क्यों मिलै गर्भ मुठी बिल लाए। बिछड़िया गुरु मेल सी हर रस नाम प्यार, साच सह शोभा कणी हर गुण नाम आधार। ज्यो पावे तो रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार। अखर पड़ पड़ भुलिए पेखी बहुत बमान, तीर्थ नाता क्या करे मन में मैल गुमान। गुरबिन किन समझाइए मन राजा सुल्तान, प्रेम पदार्थ पाइए गुरमुख तत् विचार। सत ने आप गवाया गुर के शब्द श्रृंगार, कर ही सो फिर पाया गुर के हित अपार। गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए, गुर का शब्द मन बसिया हम मैं बिचों खोए। नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए, कर्म ले ता पाइए अपना लिया जाए। गुर की चानी लग रहो बिचों आप गवाए, सच्चे से तीरत्या सचो पल्ले पाए। पुलण अंदर सब को ओ पुल गुरु करतार, गुरमत मन समझाया लागा ते सह प्यार। नानक साच न विसर मेले शब्द पार। श्री राग महला पहला। तिशना आया तिशना माया मोहनी सुत बंधप कर नार, तिशना माया मोहनी सुत बंधप कर नार। तन जोबन जग ठगिया लभ लो हंकार, मोठ गोली होमी सब बरते संसार। मेरी प्रीतमा मैं तुझे ने अब न कोए, मैं तुझे ने अब न पावी तू पावे सुख होए। रहो नाम सलाही रंग स्यों गुर के शब्द संतोख, जो दिसे सो चालसी कूड़ा मोह न वेख। बाट बटाऊ आया

संभाल हर, मैं पल्लै बद्धा शिक जीव, मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुर अंतर शब्द वसाया, सतगुर पुरख बखाड़िया, मस्तक धर के हाथ जीव, मैं बद्धी सच धर्म साल है, गुर सिखा लेंदा पाल के, पैर धुआं पखा फेरदा तिस निम निम लगा पाए जीव। सुन गल्लां गुर पयाया, नाम दान इशनान दृढ़ाया, सब मुक्त हुआ संसार अड़ा, नानक सची बेड़ी चाढ़ जियो, सब सृष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कन सुनो अरदास जियो, ठोक बजाई सब डिठियां तो सापे लेन छड़ाए जियो, हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, पै कोई न किसे न जान दा, सब सवाली बुठियां होया हले मीरा जियो, चिम चिम अमृत वरतदा बोलाया, बोली खसम दा बहु माण किया, तदु परे तू आपे पाए थाए जियो, तेरियां भगतां भुख सद तेरियां, हर लोचा पूरन मेरियां, देह दर्श सुख दातिया, मैं गल विच लै मिलाए जियो, तुर जेवड़ी अवर ना पाड़िया, तू दीप लो पाया लिया, तू थां तन तर रव रहा, नानक भगतां सचे धार जियो, हौ गोसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच दुमालड़ा, सब होई छिंज इकट्ठियां, दई बैठा वेख आप जियो, वात वजन